भाई अल्लाह पते साई थी मैं कहता था कि ऐसा साई लगे निम्न जैसे को को तुम चाहते हो किलेने को तुम चाह आगो मैं कोई ने वरना मैं साई तब मैं जगह वन क्या साई कभी सजी तू गुली जुदो सो को निस्तातु 74 आश नंबर 3 और उन्हें जितने की कुरे आमोस आमोस का की गाजे 600 बोनस चो सिंह तो मुकी गाजे 60 गुरु जीता आगे नहीं और चिंगे इंगा रगा रगा नानिया नता का बोनस यान ईयर मेलन जी को रगे रविनिक चीज तो आज ती

आया को तार गत को मीते बी लगे न्यूरोन जितने कुरे जुलिया लगा की काजी 56 न्यूरोन जितने कुरे शै लगा की काजी 640 और न जितने कुरे लिंसी का की काजी न्यो हे ये वे 500 कोन कोई मिसिंग जितने की कुरे टिमोथी का की काजी 500 स्टार्टू 74 आश नंबर 3 को सो न्यू लबा तो रगा रगा मैं कांगे कर चिंसांग मैराथन का सीटिंग जो कभी सामने जब भी कभी सब कुछ चिकेरा भी नहीं करे इतने ही नहीं के